का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से,

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेल।

0: हवा से बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और आपने ट्यून किया है MGM 90.8 FM। और आज है संडे, संडे यानी कि 90s की यादों का दिन।
1: वो बातें 90s की बातें,
0: एक ऐसा सफर जहां हर एपिसोड के साथ हम पलट कर जाएगी उस दौर में जब जिंदगी ऑनलाइन नहीं दिल से कनेक्ट होती थी। वो दौर जब मोबाइल से ज्यादा लोग एक दूसरे को जानते थे, जब फोटो से ज्यादा यादें बनती थी, और जब खुशियां किसी नोटिफिकेशन से नहीं दोस्तों की आवाज से मिलती थी। 90s सिर्फ एक याद नहीं, एक एहसास था। वो कैसेट की कहानियां, वो दूरदर्शन की पहचान, स्कूल की शरारतें, कॉमिक्स का नशा, गलियों का शोर और घर की वो डांट जिसमें भी प्यार छुपा होता था। इस शो में हम याद करेंगे वो छोटी छोटी बातें जो शायद आज की जनरेशन कभी महसूस ही नहीं कर पाएगी। और अगर आप भी 90s के बच्चे हैं तो यकीन मानिए हर एपिसोड के साथ आप न तो अपने 90s की यादों में चले जाओगे और चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आएगी। तो तैयार हो जाइएगा नॉस्टैल्जिक की इस खूबसूरत जर्नी के लिए, क्योंकि कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती, महसूस होती है। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे जिससे 90s के बच्चे रिलेट कर ही पाएंगे। क्या है टॉपिक पता चलेगा कुछ ही देर में। उसके पहले एंजॉय करते हैं 90s वाले बेहतरीन से गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
0: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: के बच्चे स्वाइप करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, और 90s के बच्चे पेज पलटते थे और अपने सपने देखते थे।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ 90s वाला सफर। 90s में कॉमिक सिर्फ किताब नहीं होती थी, वो हमारे सुपर हीरोज का घर होता था। चाचा चौधरी की वो तेज अकल, साबो की ताकत, नागराज का एक्शन और सुपर कमांडो ध्रुव की हिम्मत, हर संडे हमें बस इसी का इंतजार होता था। और याद है चंपक, लोटपोट, नंदन, सुमन, सौरभ, घर में मैगजीन आती थी, सबसे पहले कौन पढ़ेगा उसकी भी एक रेस लगती थी। कई बार दोस्त से कॉमिक्स एक्सचेंज होती थी, तू मेरी नागराज ले ले, अपनी चाचा चौधरी मुझे दे दे, इस तरीके से हम एक्सचेंज करते थे। और अगर किसी ने पेज फोल्ड कर दिया, बस फिर दोस्ती भी थोड़ी देर के लिए खतरे में आ जाती थी। अगर इतनी सी भी खरोच उस मैगजीन पर आई ना, तो दिल को दर्द होता था। कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते हम खुद को हीरो समझने लगते थे, हर कहानी एक नई दुनिया में ले जाती थी। बिना इंटरनेट, बिना एनिमेशन, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के दौर में हम जीते थे। आज स्क्रीन बढ़ गई है, लेकिन वो कागज की खुशबू, नए कॉमिक्स का एक्साइटमेंट और पेज पलटने की आवाज शायद कई पेजें छूट गई है। अगर आज भी आपके घर किसी कोने में वो पुरानी कॉमिक्स रखी है, तो एक बार जरूर खोलिएगा, हो सकता है उसके बीच सिर्फ एक कहानी नहीं आपकी बचपन की यादें बसी हो। वैसे बताइए मुझे कि आपकी कौन सी कॉमिक बहुत फेवरेट थी। डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस पेज पर, एंड स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: 90s के बचपन की यादें ही कुछ अलग थी ना। उस वक्त सुपर हीरो सिर्फ आसमान में नहीं उड़ते थे, कुछ पगड़ी पहनकर साइकिल से भी आ जाते थे। याद है वो मैगजीन आपकी?
1: वो बातें 90s की बातें।
0: जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाचा चौधरी की। कहते थे ना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और उस जमाने में भी जब हमें कंप्यूटर देखा भी नहीं था, तब भी हमें यकीन था कि चाचा का दिमाग तो सबसे तेज है ही। उनके साथ हमेशा होता था साबू जो कि जुपिटर से आया है, ऐसा कहते थे। जो गुस्सा आते ही पहाड़ भी हिला देता था। लेकिन असली हीरो सिर्फ ताकत नहीं, चाचा की सोच थी। वो हमें सिखाते थे कि हर मुश्किल का हल दिमाग और समझदारी से निकलता है। हर महीने नई कॉमिक्स का इंतजार होता था। स्टेशनरी की दुकान पर जाकर पहला सवाल होता था, भैया नए चाचा चौधरी आए हैं क्या? और कॉमिक्स मिलने के बाद घर पहुंचने का भी सब्र नहीं होता था, रास्ते में ही पढ़ना शुरू होता था। उस कॉमिक के ऊपर एक टीवी सीरियल भी बनी थी जो कि बहुत पॉपुलर भी हुई थी। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ गई हो, लेकिन चाचा चौधरी ने हमें एक बात जरूर सिखाई, ताकत से ज्यादा जरूरी होती है अकल। और शायद इसीलिए आज भी जब बचपन याद आता है तो चाचा चौधरी और साबू की मुस्कान दिल में वैसे ही जिंदा होती है। और भी कुछ कॉमिक्स की बात होगी कुछ ही देर में 90s वाले शो में।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं। वो बातें
2: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: नागराज कॉमिक के बारे में आपने तो सुना ही होगा या आपने 90s के बचपन में पढ़ा ही होगा ये कॉमिक्स को। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। और नागराज सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं था, वो हमारे इमेजिनेशन का असली सुपर हीरो भी था। उसके शरीर से निकलते सांप और उसकी स्पीड, उसकी ताकत और सबसे बढ़कर उसका इंसानियत के लिए लड़ना। हर नई कॉमिक एक नया मिशन लेकर आती थी और हम उसके साथ हर पेज पर सफर करते थे। याद है ना जब नई नागराज कॉमिक आती थी तो दोस्त एक दूसरे से कहते थे, पढ़ ली क्या तूने? एंडिंग मत बताना, मुझे अभी पढ़नी बाकी है। और फिर कॉमिक खत्म होते ही वही किताब पूरे मोहल्ले में घूमती थी अपने दोस्तों के पास। वैसे उस वक्त ना मैं ग्राफिक्स था ना VFX, लेकिन सिर्फ कुछ रंग बिरंग पेजेस और जबरदस्त इलस्ट्रेशन हमारे दिमाग में पूरी फिल्म बना देता था। हर पैनल को देखकर लगता था कि जैसे नागराज सच में हमारे सामने लड़ रहा है। नागराज ने सिर्फ एक्शन नहीं दिया था, उसने हमें ये भी सिखाया था कि असली हीरो वो होता है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की इंसानियत के लिए करे। आज भी अगर कहीं पुरानी मैगजीन नागराज वाली मिल जाए तो उसके पेजेस से सिर्फ कहानी नहीं बचपन की खुशबू और यादें निकल आती है। और भी ऐसी 90s की यादें हम ताजा करेंगे बट कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
3: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
5: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
4: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी। To visit mgmu.ac.in.
6: Admission open. MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sirko Chhatrapati Sambhajinagar.
7: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM Pet Care Pet Clinic। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM Pet Care।
8: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
9: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
8: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। Also direct admission in B Pharmacy second year. Avail attractive scholarships.
9: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
8: For admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in।

0: 90s के बचपन में एक ऐसी मैगजीन थी जो बस पढ़ने के लिए नहीं मुस्कुराने के लिए भी काम आती थी, और उस मैगजीन का नाम था चंपक।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: चंपक हाथ में आते ही लगता था कि जैसे एक छोटी सी रंग बिरंगी दुनिया खुल गई है। उसमें होते थे मजेदार कार्टून्स, प्यारी प्यारी कहानियां, पजल्स, जोक और ऐसे कैरेक्टर जो हर बच्चे के दोस्त बन जाते थे। स्कूल की छुट्टी हो या गर्मी की दोपहर, एक कोने में बैठकर चंपक पढ़ना अपने आप में एक अलग ही सुकून था। और मम्मी हमें आवाज लगाते लगाते थक जाती थी और हम कहते थे बस मम्मी ये आखिरी कहानी। लेकिन वो आखिरी कहानी कब दो तीन और कहानियों में बदल जाती थी पता ही नहीं चलता था। सबसे खास बात ये थी कि चंपक सिर्फ हमें हंसाता नहीं था, हर कहानी के आखिर में एक छोटी सी सीख भी देता था। दोस्ती, ईमानदारी, मदद और अच्छी आदतों की बातें बिना लेक्चर दिए बड़े प्यार से सिखा देता था चंपक हमें। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल और टैबलेट है, लेकिन उस वक्त हमारे हाथ में चंपक होता था और यकीन मानिए उसके हर पेज के साथ बचपन और भी खूबसूरत लगता था। अगर आज कहीं पुराना चंपक मैगजीन आपको मिल जाए तो जरूर पलट कर देखिए, हो सकता है उस रंगीन पन्नों के बीच आपकी बचपन वाली मुस्कान आज भी आपका इंतजार कर रही हो। है किसी के पास ये चंपक मैगजीन? बताइए जरा डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: 90s के वक्त में बस बॉलीवुड की दुनिया टीवी और सिनेमा तक नहीं थी बल्कि फिल्म फेयर मैगजीन तक भी थी।
1: वो बातें 90s की बातें।
0: हर महीने लोग इंतजार करते थे इस मैगजीन का। मैगजीन के कवर पर किस हीरो या हीरोइन की फोटो होगी, शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, जूही चावला या फिर आमिर खान या अमिताभ बच्चन या कौन रहेगा इस बार, ये देखने की एक्साइटमेंट बहुत अलग होती थी। फिल्म फेयर के पेजे सिर्फ तस्वीरों से नहीं बॉलीवुड के किस्से, इंटरव्यूज, अपकमिंग फिल्म्स और शूटिंग के पर्दे के पीछे की कहानियां इन सब से भरे होते थे। उस दौर में ना सोशल मीडिया था ना यूट्यूब। अपने फेवरेट स्टार की बातें, गॉसिप जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी फिल्म फेयर वाली मैगजीन। कई लोग फिल्म फेयर के पोस्टर संभाल कर रखते थे, मैगजीन से पोस्टर निकाल कर दीवारों पर लगाना उस वक्त किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। अगर आप 90s के होंगे तो आपने भी ये सब चीजें की होगी। आपके रूम में, आपके घर पर एक दीवार पर आपने अपने फेवरेट स्टार की कुछ फोटो चिपकाई होगी जो कि इस मैगजीन से आई थी। और जब फिल्म फेयर अवार्ड्स का स्पेशल एडिशन आता था तो लगता था कि जैसे पूरा बॉलीवुड घर पर आ गया है। आज एक क्लिक में हमें पूरी अपडेट मिल जाती है हर सेलिब्रिटी की। लेकिन उस वक्त एक मैगजीन में एक एक पन्ने के ऊपर हमें हर एक एक्टर की अपडेट मिल जाती थी। हर फोटो को देखा जाता था, हर इंटरव्यू को महसूस किया जाता था। शायद इसीलिए फिल्म फेयर सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, वो 90s की बॉलीवुड लवर्स की फिल्मी सपनों की खूबसूरत दुनिया थी। तो ये मैगजीन तो आपने पढ़ी होगी, जो 90s के है उनसे मैं कह रहा हूँ। एक अलग ही मजा था, एक अलग ही सुकून था। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: संडे यानी कि 90s के सफर में लेकर जाने वाला अपना ये दिन आप सुन रहे हो
1: वो बातें 90s की बातें।
0: और 90s वाले शो में आज हमने 90s की बहुत सारी प्यारी हसीन यादें उनको ताजा करने की कोशिश की। आई होप कि इसके जरिए आप कुछ पल के लिए क्यों ना हो लेकिन 90s वाली दुनिया में तो चले गए होगे, जाना भी चाहिए क्योंकि 90s का वक्त तो अपना बचपन वो दुनिया और एक सादगी भरी महफिल कुछ अलग ही रंग थे और इसके गाने तो लाजवाब थे। आई होप कि आपको ये 90s वाला सफर पसंद आ रहा होगा तो जरा आप भी मुझे मदद कीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पर बात करना चाहोगे या आप भी बात कर सकते हो यहाँ पर आके या फिर सुनना चाहोगे 90s वाला ऐसे टॉपिक बताइए जो कि मैं अगले एपिसोड में ले सकता हूँ। बताइए, बेझिझक बताइए और 90s की आपकी कुछ यादें होगी तो वो भी हमारे साथ आप ताज़ा कर सकते हो, उसकी यादें शेयर कर सकते हो। कहाँ करोगे? DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर और व्हाट्सएप नंबर है 9359320080। मैं RJ Adnan फिलहाल लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं मंडे मॉर्निंग में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड एंजॉय MGM 90.8 FM।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
0: 90s की बातें वितार जेदनान ऑन MGM 90.8 FM।
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी to visit mgmu.ac.in।
4: Admission open MGM University School of Engineering and Technology programs BTech 4 years after HSC Computer Science and Engineering IoT Cyber Security including Blockchain Technology Computer Science and Engineering Cyber Security Electronics Engineering VLSI Design and Technology Electrical Engineering Robotics and Automation। For admission visit mgmu.ac.in।
5: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर,
6: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है तो

0: रखे।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है तो

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम तो।

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

जवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भाग किस में दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: आपल्या इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 44.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, Institute, Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology, UG and PG.

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach aapla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatat new advanced technology hi shiknyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM साथ है।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute of Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

था लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी, पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी, पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे,

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप, मेरी लड़ी है।

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।